गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई

आइए ये सफल हो जावे, मथा टिका आइए, उस मालक दा शुकराना कर आइए जिस मालक ने ए सोना लाल बख्शिया। क्योंकि सिफती गंड पवे दरबार, पुती गंड पवे संसार, मिठी मुराद बड़े सिदक दे नाल, बड़े प्यार दे नाल नितनेम करदे जदों गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच पुजे। आओ करो दर्शन, अकाल तख्त ते आप विराजमान हन, जिधर वेखदे हन मानो मेरा दा मीह वस रिहा। जो कोई मन विच इच्छा करदा है उदियां चोलियां भर रहे हन, ते जदों इस दंपति ने आके मत्था टिकाया इस बच्चे नूं ते झट बच्चा शरीर त्याग गया, शरीर त्याग गया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह इस बच्चे नूं आशीर्वाद देके कहन लगे, भाई दबा दे हो इस, जो मालिक करता है भला करता है। उच्चारण करो श्री, जो वाहिगुरु करदा है भला करदा। दबा दिता, बड़े निराश होके घर नूं आए, भई गए सां खुशियां मानन ते दुखां दियां झोलियां भर के आ गए। गुरु का सिख अपनी घरवाली नूं समझांदा है, पलीए पुरशे मालिक जो करदा भला ही करदा, पता नहीं इस विच ही साडा कोई भला हो। सानू निशर्द नहीं होना चाहिदा, सिदक नहीं हारना चाहिदा, ये सारियां दातां ओदियां हन। वाहिगुरु ने बख्शिश कीती, अगले साल फिर सोना लाल बख्शिया। हुण घरवाली दा जी नहीं करदा के लै जावां, किते फिर ना शरीर त्याग जावे, पता नहीं की कारण है। पर गुरु के सिख ने आख्या, जिस बच्चे ने गुरु का दीदार नहीं कीता, गुरु ने जिस बच्चे नूं अपना नहीं बनाया, वो साडा भी नहीं। इसलिए पहले गुरु दे चरणा ते नमस्कार करानी है। भागवाने तू मन नूं डोलाए मन ना कर, असी गुरु के बच्चे हां, वो साडे माता पिता हन, ते माता पिता कदे भी अपने बच्चियां नाल वितकरा नहीं करया करदे। प्यारी सात संगत, जदों मथा टिकाण लई आए, सतगुरां दे चरणां ते लिटाया, ए बच्चा भी शरीर त्याग गया। उच्चारण करो श्री, हुण तां बड़ा ही बैराग आया। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, इस नूं दबा दिओ, जप जी साहब दा पाठ करके ते दबा दिता। जो मालिक करदा चंगी करदा। बड़े निराश होए, पर एक पासे गुरु का सिदक भी है, वही गुरु जो करदा भली करदा। प्यारी सात संगत, तीसरे साल भी निरंकार ने एक लाल इन्हां नूं बख्शिश कीता। हुण घरवाली कहंदी, मैं नहीं लै जाना इसनूं। गुरु का सिख कहन लगा, भागवाने ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ, ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। सदा चिरन जीव रहो, सुख मानो, गुरु घर दी खुशियां मानो। ते गुरु का सिख कहता, महाराज पहलियां नूं भी यह असीस दे देनी सी। तां धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, परमेश्वर दा हुक्म एवें सी, उन्हां दा जन्म मरण कटिया गया, ते तुहाडे भी दुख कटे गए हन। पहले बच्चे ने 16 साल की उम्र विच तुहानूं विछोड़ा देना सी, ते कितना दुख होंदा। दूसरे बच्चे ने 25-26 साल की उम्र विच व्याह करा के तुहानू विछोड़ा दे जाना सी, ते माता पिता दे बैठियां बच्चा चला जावे, कल जे नू शेक पै जांदे हन।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ 84 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

संसार दे जिया उते कलगिया वाले पातशाह ने अज दा दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा मनांदिया होया खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास। पातशाह फरमान करते ने ये जो खालसा है ये मेरा ही रूप है खालसे मैं हूं करो निवास मैं इस खालसे विच ही निवास करता हां। जो नीच जातां दे अखोती हन गरीब हन मजलूम हन गलगियां वाले पातशाह ने बख्शिशां कीतियां बड़ियां रहमतां कीतियां दर्जा दिता अपना रूप भी बना लिया। सो आओ सात संगत जीओ अज के दिहाड़े नूं पवित्र जानदिया होया आपां सारे जाने

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नू जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा ये मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वैष आ गई, इहनूं इह पता लग

0: डीएम म्यूजिक पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई।
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस

इन्हां विकारां तो किस तरह बचा मैनू नहीं पता। मोको बाहां दे बीटला जिस तरह

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसया, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पिया तुलसीदास जी दे उते राम लिखे, ते सेठ ने हसदिया होया।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे

कोई दान करे। कोट जो तीर्थ करे तन जो ही वाले गारे। कोट कहते करोड़ा कोई तीर्थां ते जावे तन जो ही वाले गारे। तन के शरीर में अगर कोई अपने शरीर में हिवालय हिमालय पर

हे वाहिगुरू, हे अकाल पुरख, तू सारियां ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेहर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र भन तर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेह कर।

कमाल दियां गल्लां कहीं, कमाल दे बचन कहे, कथा कीर्तन मन नै लावे, संत सिख को बुरा अलावे, निंदा जुआ हिरे जो माल, जो पंक्तियां तुसी सुनियां। कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने, ए भी जुआ है। आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल, महा दुखावे तिस को काल। आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो, भाई किथे घट हां किथे पूरे हां, पूरे होना है। बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी, सिख एक होर काम करे,

तीन चीजा इको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा इको जिया इनू तिरपावल की दे कहते हैं।

तो हम तक की सुने हैं अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते कुछ कहने हो तो वो एक गलत फहमी है, फिर महाराज जी क्यों करिए, दसो क्यों करिए। तो कहेंगे हम गुरु की मत तू ले आने। इंसाफ सिंह गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने इन्होंने वर्तो। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी सी सुखमी साहब के लफज आने जरा उन्होंने निके जो है न्याणिया जो 5-7 साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा से उन्होंने बेचारे भोले पालन के भी समझ नहीं सी आने। ये सियाने फिर आने कौन हैं? आने वो हैं जिन्होंने पास ज्ञानक नहीं है पर उन्होंने वहन है ज्ञानक। जो ग्रोन न्याणे हैं उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंगे है जो आखे हम बार तू गुरु पिता हैं जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुम्हें बच्चा समझ दो मैं न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हैं तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौलिया के नाल अकल आती है वह तो कोई संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूं तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणत क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत को ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत वे वे सियाने जो हैं वो अपनी सियाणप के डुब जाते हैं अपनी सियाणप के डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत अगे चल रहे हैं।

याद रखी रहा होंगे। हां घर से कोई मरण की गल करे तो यह जरूर सुनीता सी कि मोरे कहते सुख बोलो पिताजी की गल करो, मरण की गल ना करो सुख बोलो, सुख की गल करो चुप बचन बोलो। महाराज जी बाबा जी थां थां ते कहते हैं मरना याद रखो, गुरुदा मंडप माल न लाए अपना चित मन इन्हों मंडपा नाल उस दुनियादारी के माल नाल ना लगा तो की कर मर्ग सतानी चित कर। मर्ग सतानी सतानी का भाव बहुत शक्तिशाली, मर्ग माने मृत्यु, मृत्यु जो कि बहुत ही शक्तिशाली है उन चित कर उन याद के बिच रख चित दे बिच रख। गुरु महाराज जी बाणी च आखदे हन कि तृष्णा वड्डा रोग लगा, साथ संगत ध्यान अपना फोकस करके रखो क्योंकि मैं कहना आप जी कीर्तन सुनने के बाद घर जाओ तो जा गलबात करो, उसे सुन के आए हाँ फिर उसमें बैठ के विचारो, उसका कोई नोट भी लाओ ताकि ना दसा दिनों के बीच असं कुछ अचीव करना। बाबा जी बाणी चाहते हैं कि कृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनोविसार, मरना मनोविसार दिता, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, कहते उसने मरना बिल्कुल विसर गया, मरना बिल्कुल विसर गया, इसने मरना भी कहते मरना याद रखो। गुरु बाबा जी अपनी बाणी के आखते हैं मौत में याद रखो, कहते हैं मत्ती मरण विसारे है, एक दुनियावी वस्तुओं के विच मत्ती मैंने मस्त हुई हुई इस जीव जिंदड़ी ने इस मत ने की किया है मरना मनो विसार, मत्ती मरण विसार खुशी की दिन चार चार एक दिन की खुशी की इसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जड़ा मेरा जीवन है ये एक बुलबुले तो ज्यादा वध के अहमियत नहीं रखता। जैसे जलते बुदा उपजे दिन से मीत, जब रचना कैसे रची कौ नानक संगीत। असि एक पानी देते जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है, कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे ये गल कह रहे हैं कि तुहानू मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी। महाराज जी कहते हैं हाँ सानू तुहाडा पता है, सानू पता है तुहाडा कि तुसी कौन हो, एक पानी के बुलबुले तो वध के कुछ नहीं है कई जानते कि यू डोंट नो, असं कह दें कि यू डोंट नो। महाराज जी कहते हाँ सानू पता तुम कौन हो, दुक्का अस्त रक्त प्रेते चाम इस उपर में रखो गुमान, हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिर्ज एक आदि यह गंदगी का एक फैला है, इस उत्ते मान करते उत्ते कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते सानू पता है तुम कौन हो, बाकी तुम कहते कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई अंदर खुदा मैल ही मैल है और कुछ नहीं मैल ही मैल। अभी कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सबको भरिया फूक हमने भी फूक न सारे भरे पे नो जी। बाबा जी कहते मैं नहीं कह रहा था, गुरु बाबा जी कहते असि एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमें भी फूक के नाल परे पे हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़िया का एक पिंजरा हो, पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है क्या परिभाषा इस पांडे का, इतना को लागे थनका इतना को थनका लगे तो ये सुख सकता है मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं। इस करके कहते मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुहाडी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल अपने तन नाल अपने बाकी तमाम चीजों के नाल टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन का एक ही साधन है कि मौत में याद रखो, जो मौत में याद रखेगा उसके भी ही जिंदगी दे फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की है फिर मैं ही बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होता।
तो गुरु की टीचिंग जो दूसरा पॉइंट आता है कि मौत में याद रखो हम मैंने दसो ये मत कितने मिलती है जो मिलती है तो दस कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो बिल्कुल यह है गुरु की मत जो असेंशियल चीजा गुरु की मत में सिखा लिया जा दुनिया की किसी भी होर मत के दायरे के आदि ही नहीं होर बहुत कुछ है गुरु महाराज सिखा दिन सादा रहो सादे रहो ये कौन सिखाता है कि सादे रहो साड़िया लाइफ के अनुभव सोफिस्टिकेटेड हैं बड़ी कॉम्प्लीकेटेड हैं बड़ी लग्जरियस हैं इसका जो एक्सपेंसिव भी हैं एक्सपेंसिव होने करके स्ट्रेसफुल भी हैं बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं और महाराज जी कहते सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की हम उसकी मिसाल सुनो कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है जेदे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना तो बनाने में चिर लगे ना उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे ना उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे तो ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे कहते खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लोन ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है जेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन जेरा रोटी कहते मास वाली रोटी नहीं पहला मुर्दार ले आओ उन्हें खिलो उन्हें बनाओ कर दिया जाता है जो है वो मेरा करो फिर जिन्होंने आज खामा जो कदे सामने नहीं खाएंगे कुदरत के ऐसा नियम नहीं है जो कर्म करोगे उसका फल उसे ग्रहण ही भुगतना पाएगा क्योंकि हीरा रोटी कार ने स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है क्योंकि कौन निकले जाए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे कबीर साहब का श्लोक है हेरा रोटी कार में गला कटावे कौन कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास हेरा रोटी का मतलब हूं मास वाली रोटी कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाना बंदा गला कटा है कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो यह है गुरमत की सिक्ख्या गुरमत की टीचिंग ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੁਰਾ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ तो साहब सिंह जी अगर आप जी के सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है मन भी मत जी सू इधरों उधरों मिली है असं उसमें मत समझी बैठे हैं अपने आप में अकल वाले या मत वाले समझी बैठे हैं कदे सवाल नहीं किया क्वेश्चन नहीं किया शक नहीं की कदे सोचा नहीं कि मत कितने ले भी है वैसे ही कितने आ गई है
ਨਹੀਂ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ, ਹਰ ਕਰਮ, ਹਰ ਸੋਚ ਉਹ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤ ਖਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਖਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੀਚੀ ਨੀਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਕੌਂਟਰੀ, ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤ ਖਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੀਚੀ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਫਿੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਫਿੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ ਲਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਿਮਤ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦਕੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤ।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक तां निंदका ने पहला कन्न भरे सन। बादशाह कहिंदा, कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया,

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटाई

0: छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नू लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।
1: आपे पावक आपे पवना
0: आपे ओ हवाए

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है। जे उन्हें मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता है।

आख्या क्यों महल मारियां दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज पूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तों वध होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े है, जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालियां ने वह लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होंगे।

कितने कुश्वास भाई जप जप के सफल कीते। आ बैंक विच्चों लोन लईदा ना उहदा ब्याज देना पैंदा, ते असी भी श्वासां रूपी लोन लैके आए हां, ते श्वासां दा ब्याज देना ही पएगा, जे नहीं देवांगे तां फिर पकड़े जावांगे। फिर हजूर कहंदे न, आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। क्योंकि मनुख जितनियां भी सियाणपां करदा है संसार विच आके, परमेश्वर दे नाम तो बिना जितनियां भी सियाणपां हन, ए अपने गलां विच आप फाई पा लैंदा है, फिर दुखी हुंदा है। इसलिए हजूर कहंदे हन, भाई जेती सियाणप कर्म हो किए तेते बंद परे, आपीने भोग भोग के होए भस्मर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। अगे करणी कीरत वाचिए, बै लेखा कर समझाया, ठाउ न होवी पौंदी हुण सुने कह रवाया, मन अंधे जन्म गवाया। इसलिए भाई इस जन्म नूं गुवाणा नहीं, जप जप के जन्म नूं सफल करना। ए साडी जन्मां दी सुती होई सुरत नूं धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जगा रहे हन। ए मनुख तू जाग, जगत तुम्हें झूठी देखी प्रीत, जगत दियां प्रीतां झूठियां प्रीतां नी। एवें तैनू सारे कहंदे हन, भाई कोई अपदा पवे मैं तेरे लई सब कुछ वार देवांगा, पर पता उदों ही लगदा जदों सारे आसरे टुट जांदे हन, इक परमेश्वर दा आसरा रह जांदा है। ते फिर जदों मनुख निम्रता दे नाल सच्चे दिलों अरदास करदा है, परमेश्वर दी प्रीत ए लोक परलोक सवार देंदी है।